हर हर नाम की मन भूख लगाई, नाम सुने आए मन तृप्ता मेरे पाई। नाम जपो मेरे गुरसुख मीता, नाम जपो नाम में सुख पाव हो। नाम रखो गुरमत मन चीता राओ, नामो नाम सुनी मन सरसा। नाम लाहा लय गुरमत बिरसा, नाम बिना कुश्ती मोह अंधा। सब ने फल कर्म करे किए वो दुख धंधा। हर हर हर जस जपै बुढ़भागी, नानक गुरमत नाम लिव लागी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, महला चौथा राग आसा घर सेवा के तिन। हथ कर तंत बजावै जोगी, थोथर बाजै बेन। गुरमत हर गुण बोला जोगी, यह मनुआ हर रंग भेन। जोगी हर देह मती उपदेश, जुग जुग हर हर एको वरतै। तिस आगै हम आदेश रहाऊ, गावै राग भांत बहु बोलै। ए मनुआ खेलै खेल, जो वै कूप सिंचन कौ बसुदा। उठ बैल गए चर बेल, काया नगर मह कर्म कर। हर बोवहु हर जामै हर आखेत, मनुआ अस्त्र बैल मन जो बहु। हर सिंचौ गुरमत जेत, जोगी जंगम श्रेष्ठ सब तुमरी। जो देह मती तित चेल, जन नानक के प्रभ अंतर जामी। हर लावो मनुआ पेल, आस्था महला चौथा। कब को भक भालै घुंगरू ताला, कब को बजावै रबाबू। आवत जात बार खिन लग गए, तब हौ तब लग समारो नाम। मेरा मान ऐसी भगत बन आई, हौ हर बिन खिन पल रह न सकऊं। जैसे जल बिन मीन मर जाई राउ, कब को मेलै पंच सत गाय। पंच सत गायन कब को राग तुन उठावै। मेलत चुनत खिन पल चसा लागै, तब लग मेरा मानु राम गुण गावै। कब को नाचै पाव पसारै, कब को हाथ पसारै। हाथ पाव पसार तिल मतिल लागै, तब लग मेरा मानु राम सुमारै। कब कौ लोगन कौ पति आवै, लोक पतीणे ना पत होए। ना जन नानक हर हृदय सद त्याव हूँ, ता जय जय करे सब कोय। आस्था महला चौथा, सतसंगत मिलिय हर साधु। मिल संगत हर गुण गाई, ज्ञान रतन बलिया कट चानण। अज्ञान अंधेरा जाए, हर जन नाचहु हर हर त्याय। ऐसे संत मिल मेरे भाई, हम जन के तो वहां पाई राउ। हर हर नाम जपो मन मेरे, अनदिन हर लिव लाई। जो इच्छो सोई फल पाव हूँ, फिर भूख न लागै आई। आपे हर परंपर करता, हर आपे बोल बुलावै। सही संत भले तुद भावै, जिनकी पत पावै थाए। हा आपे हर परंपर करता, हर आपे बोल बुलाए। सही संत भले तुद भावै, जिनकी पत पावै थाए। नानक आख न राज हर गुण, ज्यों आखै त्यों सुख पाई। भगत भंडार दिए हर अपने, गुण गाहक बण जलै जाए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा कर अठवां के काफी। महला चौथा, आया मरण तो राहो हों मैं रोई आए। गुरमुख नाम ते आई अस्थिर होई आए। गुरपूरै साबास चलन जाने आओ, लाहा नाम सुसार शब्द सुमाण आ राउ। पूर्व लिखे डेहे से आए माया, चलन अज के कल तुरों फुरमाया। बिरथा जन्म न तिना जिन्नी नाम विसारिया। जुए खेलन जग के एह मन हारिया। जीवन मरण सुख होए जिन्ना गुर पाया। नानक सचे सच सच समाया, आसा महला चौथा। जन्म पदार्थ पाई नाम ते आया, गुरप्रसादी बुझ सच समाया। जिन धुर लिखिया लेख तिन्नी नाम ते कमाया। जार सचै सचयार महल बुलाया रहाउ, अंतर नाम निधान। गुरमुख पाई है अनदिन नाम ते आई, हर गुण गाई है। अंतर वास्ता नेक मनमुख नहीं पाई है। होमै गर्भ गर्भ आप खुआई है, नानक आपे आप खुआई है। गुरमत मान प्रगास सच्चा पाई है। राग आसा वरी महला चौसो, राग आसा वरी घर सोलवा के। दो महला चौथा सुतंग, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हौ आन दिन हर नाम कीर्तन करो, सतगुर मुख हर नाम बताया। हौ हर बिन खिन पाल रह न सकूं राउ।
हमरा श्रवण सिमरन हर कीर्तन हाऊँ हर बिन रह न सकूँ हाऊँ एक खिन जैसे हंस सरवर बिन रह न सकै तैसे हर बिन जन क्यों रहे हर सेवा बिन किन्हू प्रीत लाई दूजै पाओ रद तार किन्हू प्रीत लाई मोह अपमान हर जन प्रीत लाई हर निर्बाण पादु नानक सिमरत हर हर भगवान आस्था बरी महला चौथा माई मोरो प्रीतम राम बतावो री माई हाऊँ हर बिन खिन पल रह न सकऊँ जैसे कर हल बेल रिजाई राओ हमरा मन बै राग बिरकत भयो हार दर्शन मीत कहताई जैसे अलकमला बिन रह न सकै तैसे मोहे हर बिन रहन न जाई राख शरण जगदीश्वर प्यारे मोह शरदा पूर हर गोसाई जन नानक कै मन आनंद होत है हर दर्शन निमुख दिखाई राग आस्था कर दूजा महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद जिन लाई प्रीत सोई फिर खाया जिन सुख बैठाली तैस भौ बहुत दिखाया भाई मीत कुटंब देख बिबादे हम लाई विसग वसगत गुर प्रसादे ऐसा देख बिमोहत होए साधक सिद्ध सुरदेव मनुखा बिन साधु सब त्रोहण त्रोहयाओ एक फिरे उदासी तिन काम ब्यापै एक संचह गृही तिन को होए न आपै एक सती कहावै तिन बहुत कल पावै हार महार राखी लग सतगुर पावै तप करते तपसी पुलाए पंडित मोहे लोभ लुभाए त्रैगुण मोहे मोहिया आकाश हम सतगुर राखे दे कर हाथ ज्ञानी की होए वर्ती दास कर जोड़े सेवा करे अरदास जो तू करह सो कार कमावा जन नानक गुरमुख नेड़ न आवा आसा महला पंजवा ससु ते बिरकीनी वाक धीर्य ठाणी मुई दुख संताप घर के जठेरे की चूकी कारण पिर रखिया कीनी सुगड़ सुजान सुनहो लोका मैं प्रेम रस पाया दुर्जन मारे वैरी संगारी सतगुर मोह कहो हर नाम दिवाया राव प्रथम त्यागी हो मैं प्रीत द्वितीया त्यागी लोगा रीत त्रैगुण त्याग दुर्जन मीत समाने तुरिया गुण मिल साध बछाने सहज गुफा मैं आसन बांधया जोत सरूप नाहद वाजया महा आनंद गुर शब्द विचार प्रिस राखी तन सुहागण नार जन नानक बोले ब्रह्म विचार जो खुसुणे कमावे सो उतरै पारू जन्म न मरे न आवे न जाए हर सीती हो रह समाई आसा महला पंजवां निज भगती सीलवंती नार रूप अनूप पूरी अचारू जित ग्रह वसै सो ग्रह सुभावंत गुरमुख पाई किने विरलै जनता जित ग्रह वसै सो ग्रह सुभावंता गुरमुख पाई किने विरलै जनता सो करणी कामण गुरमिल हम पाई जज काज प्रथाई सुहाई राउ जिचर वसी पिता कै साथ तिचर कांत बहु करें फिरें उदास कर सेवा सतपुरख मनाया गुर आणी कर महें ता सर्व सुख पाया बत्ती सुलखणी सच संत तपूत आज्ञाकारी सुगुण स्वरूप इच्छ पूरे मान कंत स्वामी सगल संतोखी देर जेठानी सब परवारे माहे श्रेष्ठ मती देवी देवर ज्येष्ठ धन सो गृही जित प्रगटी आए ना जन नानक सुखे सुख विहाई आस्था महला पंजवां मता करो जसो पकन न देई सील संजम कै निकट खलोई वेश करै बहु रूप दिखावै गृह बसन न देई वाक वाक वख वख परमावै कर की नायक घर वासना दीवै जतन करो रझाई परे वै रहाओ तुरकी भेजी आई आमर नौ खंड जीते सब थान थनंतर तट तीर्थ न छोड़ै जोग असन आसु पढ़ थाके सिमरत वेद अभ्यास जय बैसो तै नाले बैस तै सगल भवन मह सबल परवेश है होछी शरण पया रहन न जपाई कहो मीता हों कै पह जाई सुन उपदेश सतगुर पहया गुर हारु हर नाम मोहे मंत्र दृढ़ाया निज कर वसया गुण गाय अनंता प्रभ मिलियो नानक भय अचिंता घर मेरा ही नायक हमारी यही आमर हम गुर किए दरबारी राव दूजा
ਆਸਥਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਜੇ ਪੁੱਤਰੀ ਚਲਾਵੋ ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੋਈ ਮਾਨੁਖ ਪਹੁੰਚਾਵੋ ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕਿਸ ਕਰੂੰ ਉਪਾਇਆ ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਸ ਛੂੜ ਪ੍ਰਭ ਤੁਹੀਂ ਤੇ ਆਇਆ ਮਹਾਂਆਨੰਦ ਚਿੰਤ ਸਹਿਜਾਇਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੂਤ ਮੂਵੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਰਹਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਕੋ ਦੀ ਆਪਦੇਸ਼ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਹਰ ਕਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੀ ਸੋ ਤੇਰਾ ਤਾਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਤੂੰ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਤੁਧਨੋਂ ਛੋੜ ਜਾਈਐ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਧਾਰੂ ਆਨੰਦ ਬੀਆ ਤੇਰੀ ਸੰਸਾਰੂ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਕਿਸ ਕੀ ਕਾਰਣੂ ਸਾਕਟ ਭੁੱਲਾ ਫਿਰੈ ਬੇਵਾਣ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ ਜਹਿ ਕਹਿ ਰਾਖ ਲਹਿ ਗਲ ਲਾਈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੀ ਪੈਜ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ਼ ਝਾਗ ਸੌਦੇ ਕਵਾਇਆ ਵਸਤ ਅਨੂਪ ਸੁਣੀ ਲਾਭਾਇਆ ਗੁਣ ਰਾਸ ਬੰਨ ਪੱਲਿਆਨੀ ਦੇਖ ਰਤਨ ਇਹ ਮਨ ਲਪਟਾਨੀ ਸਾ ਵਪਾਰੀ ਦੁਆਰ ਆਈ ਵਖਰ ਕਾਢਹੂ ਸੌਦਾ ਕਰਾਏ ਰਹਾਉ ਸਾਹ ਪਠਾਇਆ ਸਾਹਿ ਪਾਸ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਅਮੋਲਾ ਰਾਸ ਵਿਸ਼ਟ ਸੁਭਾਈ ਪਾਇਆ ਮੀਤ ਸੌਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਿਚਲ ਚੀਤ ਭਉ ਨਹੀਂ ਲਾਸ਼ਕਰ ਪਾਉਣ ਨਾ ਪਾਣੀ ਸਹਿਜ ਵਿਹਾਜੀ ਸਹਿਜ ਲੈ ਜਾਨੀ ਸਤ ਕਹਿ ਖਟਿਆ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਮਿਲਿਆ ਲਾਹਾ ਭਏ ਆਨੰਦ ਧਨ ਸਾਹ ਪੂਰੇ ਬਖਸਿੰਦ ਇਹ ਸੌਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਮਕ ਨੇ ਬਿਰਲੇ ਪਾਇਆ ਸਹੀ ਲੀਪ ਕੇ ਪਉ ਨਾਨਕ ਲੈ ਆਇਆ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੋ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਨਾ ਦੇਖੋ ਰੂਪ ਰੰਗ ਸਿੰਗਾਰੂ ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਕਿਛ ਬਿਧ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਬਾਂਹ ਪਕਰ ਪ੍ਰੈਸੇ ਜਾਯਾਨੀ ਸੁਨ ਬਹੁ ਸਖੀ ਕੰਤ ਹਮਾਰੋ ਕੀ ਅਲੋਕ ਅਸਮਾਨਾ ਕਰ ਮਸਤਕ ਧਾਰ ਰਾਖੀਓ ਕਰ ਅਪਨਾ ਕਿਆ ਜਾਨਾ ਇਹ ਲੋਕ ਅਜਾਨਾ ਰਹਾਉ ਸੁਹਾਗ ਹਮਾਰੋ ਅਬ ਹੁਣ ਸੋਇਓ ਕੰਤ ਮਿਲਿਓ ਮੇਰੋ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜੋਹਿਓ ਆਂਗਣ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾ ਚੰਦ ਨੈਸੋ ਭਾ ਬਾਸੁਰੋ ਪ੍ਰੈ ਸੰਗ ਆਨੰਦ ਵਸਤ੍ਰ ਹਮਾਰੇ ਰੰਗ ਚਲੂਲ ਸਗਲ ਭਰਨ ਸੁਭਾ ਕੰਠ ਫੂਲ ਪ੍ਰੈ ਪੇਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਈ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਕੀ ਚੁਕੀ ਕਾਰਣ ਸਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਦ ਰੰਗ ਮਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣੀ ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਹੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਣੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਉਂ ਪਰੈ ਸਿੰਗਾਰੀ ਥਿਰ ਸੁਹਾਗਣ ਸੰਗ ਭਰੀ ਸੰਗ ਪਤਾਰੀ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਾਨ ਦੇ ਕਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਲੈਤ ਦੇ ਤੇ ਉਨ ਮੁਕਰ ਪਰਨਾ ਜਿਤ ਦਾਰ ਤੁਮ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਣਾ ਤਿਤ ਦਰ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਪਛਤਾਣਾ ਐਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਡੂਬੇ ਭਾਈ ਨਿਰਾਪਰਾਧ ਚਿਤ ਵੈਂਬੁਰ ਆਈ ਰਹਾਉ ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਫਿਰੈ ਹਲਕਾਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਹੈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਉਠਾਈ ਮਾਇਆ ਮੂਠਾ ਚੇਤਾ ਨਾਹੀ ਬਾਰ ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹੀ ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਕਰਿਆ ਘਨੇਰੇ ਅੰਤਰ ਵਿਖਿਆ ਉਤਰੀ ਘੇਰੇ ਅਬਰ ਪਦੇਸ਼ ਆਪ ਨਾ ਬੂਝੈ ਐਸਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀ ਨਾ ਸੀਜੈ ਮੂਰਖ ਬਾਹਮਣ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਭਾਲ ਦੇਖਤ ਸੁਨਤ ਤੇ ਰਹਿ ਨਾਲ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਗ ਮਾਨ ਛੋੜ ਗੁਰਚਰਨੀ ਲਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੁਖ ਰੋਗ ਭਏ ਗਤ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਭਏ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਅਬ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਕਤ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤਪਤ ਬੁਝੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਾਹੀ ਬਿਨਸ ਗਇਓ ਤਾਪ ਸਭ ਸਹਿਸਾ ਗੁਰ ਸੀਤਲ ਮਿਲਿਓ ਸਹਿ ਸੁਪਾਈ ਰਾਉ ਗਾਵਤ ਰਹੇ ਇੱਕ ਬੂਝਿਆ ਆਏ ਬਸੇ ਅਬ ਨਿਚਲ ਥਾਈ ਜਗਤ ਉਧਾਰਨ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਰਹੇ ਅਗਾਏ ਜਨਮ ਦੋਖ ਪਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਛੈ ਅਬ ਪਕਰੇ ਨਿਚਲ ਸਾਧੂ ਪਾਈ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਗਾਵੇ ਮੰਗਲ ਮਨੁਆ ਅਬ ਤਾਂ ਕਉ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨ ਖਾਏ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹਮਾਰੀ ਸੁਖਦਾਈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਰਾਈ ਨਾਮ ਤੀਰਾ ਜਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਓਤ ਪੋਤ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਰੜਾਵੈ ਬਿਲ ਲਾਵੈ ਨਿੰਦਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਿਸਰਿਆ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਵੈ ਨਿੰਦਕ ਰਹਾਉ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਕਾ ਸੰਗੀ ਹੋਵੈ ਨਾਲੇ ਲਏ ਸਧਾਵੈ ਅਣਹੋਂਦੀ ਅਜਗਰ ਭਾਰ ਉਠਾਏ ਨਿੰਦਕ ਅਗਨੀ ਮਾਹੀ ਜਲਾਵੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਦੁਆਰੈ ਜੇ ਹੋਏ ਅਤੀ ਬਤੀਤੈ ਸੋ ਨਾਨਕ ਆਖ ਸੁਣਾਵੈ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਉ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ ਬਿਗਸਾਵੈ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ
ਜਾਉ ਮੈਂ ਕੀਓ ਸਗਲ ਸਿੰਗਾਰਾ, ਤਾਉ ਭੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਾ ਪਤੀਆਰਾ, ਅਨਕ ਸੁਗੰਧਤ ਤਨ ਮਹਿ ਲਾਵਉ, ਉਹ ਸੁਖ ਮੈਂ ਤੈਲ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਵਉ।

जैन दिन करके कीती रात। खासम बिसा रहे तेकम जात, नानक नावै बाज सुनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जान सतगुर सतपुरखा। बिनो करु गुरपास, हम कीरे किरम सतगुर सरणाई। कर दया नाम प्रगास, मेरे मीत गुरदेव। मोह कौ राम नाम प्रगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई। हर कीरत हमरी रह रास रहाउ, हार जान केवड़ भाग बढ़ेरे। जन हर हर शरदार प्यास, हर हर नाम मिल त्रिपता सहें। मिल संगत गुण प्रगास, जिन हर हर हर रस नाम न पाया। ते बाघहीन जम पास, जो सतगुर शरण संगत नहीं आई। त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई। तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, तन तन सतसंगत जित हर रस पाया। मिल जन नानक नाम प्रगास, राग गुजरी महला पंजवा। काहे रे मन चितवै उदम, जा हर हर जियो परया। सैल पत्थर मैं जंतो पाई, तां कारज कागै कर धरया। मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो धरया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूखे काष्ट हरिया रहाऊ। जनन पिता लोक सुत बनिता, कोई न किस की धरया। सिर सिर रिजक संभाही ठाकुर, काहे मन पव करया। उडे उड़िया वैसे कोसा, तिस पाछे बजरे शरिया। तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन महे सिमरन करया। सब निधान दस अष्ट सुधान, ठाकुर कर तल धरया। जन नानक बल बल सदबल जाइय, तेरा अंत न पार भरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख नंजन हर पुरख नंजन, हर अगमागमा पारा। सब त्यावह सब त्यावह तुद जी, हर सच्चे सृजनहार। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्याव संतो जी, सब दुख विसारणहार। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे जोज बिडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हम तुद बिन वरना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख बखाणा। जो सेव है जो सेव है तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर ध्यावै तुद जी, से जान जुगमय सुखवासी। से मुक्त भई जन हर ध्याया जी, तन तूटी जमकी फासी। जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ ध्याया जी, तिन का पाओ सब गवासी। जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर ध्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करें हर पूजा जी, तब ताप है जपें बेअंता। तेरे अनेक पढ़ हैं बहु स्मृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो पाव हैं मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुद जीवड़ बरना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निचल करता सोई। तुद आपे पावै सोई वरतै जी, तू आपे करहे सोई। तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जान होई। आसा महला चौथा।

अपना जान करो व्रत पार। हमरे दोष्ट सब तुम काव हो, आप हाथ मोहे बचाव हो, सुखी बस मोरू परिवार, सेवक सिख सब करतार।

प्रयासा। तुम है शाढ़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं असो तुम ते पाऊं। सेवक सेख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे बरियाए, मरण काल का त्रास ने बरियाए। हूँ जो सदा हमारे पछा, सरिया तुझ कर रक्षा। अच्छा।

राम कली महला तीजानंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु दा पाया सहज से दी मन बजियां बधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया शब्द उतां गावो हरि के रामन जिनी बसाया कहे नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार करे तेरा कार्य सब सुवारना सबना गल्ला समर्थ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा करता तेरा सब किस है जिस दे सो पावे सदा

करते रहे। साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मनाए वसया, जिन इच्छा सब भजाइया, सदा कुर्बान किया गुरु बिट हो, जिस दियां वड्याइया, कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधार। वाजे पंच शब्द कर सभागै, कर सभागै शब्द वाजे कलाजित कर धारिया, पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जन कौ से नाम हर कह लागे, कहे नानक तैं सुख हुआ तित कर अनहद वाजे, आनंद सुनो वड भागी हो।

जिसे तू खसम समाए पौड़ी। नानक अंत न जापनी हर तांके पारावार, आप कराए साखती फिर आप कराए मार। इतना गली जंजीर।

साक्षी उस प्रभु तो हो रही है, सारी लीला उस प्रभु तो हो रही है। अखीर विच महाराज कहंदे ने नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार। उस परिपूर्ण परमात्मा ने जो कुछ ए जगत बनाया है करना, उसने जो कुछ ए कीता है दरअसल संभाल भी वो आप करता है। ऐसा नहीं कि बना के वो एक पासे बैठ गया कि संभाल नहीं कर रहा। अभागी है ओ मां, दुष्ट है ओ मां जो बच्चे नु जन्म देखे बेफिक्र हो गई है, बच्चे दी सार नहीं लेंदी पई, बच्चे दे रोने नु अनगहला कर रही है, ओ भुख नाल तड़प रहा है, ये परवाह नहीं करती, ये मां नहीं होएगी, ये ते दुष्ट होएगी। सारा संसार बनाया परमात्मा ने, स्त्री के नाल जननी भी है मां भी है, कि वो बेफिक्र हो जाए, एक पासे हो जाए, सार ही ना लवे। महाराज कहते ऐसी गल नहीं है, नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार। जिसने ये सारा जगत बनवाया है, ब्रह्मंड बनाया है, बणतर बनाई है, सार भी वो आप कर रहे हैं, संभाल भी वो आप कर रहे हैं। देखने विच आया है वाकई जर्रे तो लेके सूरज तक वो संभाल कर रहे हैं, तदी ते सब कुछ नियम दे चल रहे हैं, मर्यादा दे चल रहे हैं। अगर उसकी संभाल ना होवे तो साडे शरीर विच भी बेनियमी हो सकती है, हो सकता है साडे दंद सिर ते जा लगन, साडे हथ थले रह जान, लत्तां उपर हो जान, हो सकता है नक पिछे लगे, अखां अगों लग जान। नहीं, ये जिहड़ी तरतीब है, ये जिहड़ी बणतर है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि संभाल है उसकी। और नियम नूं जिहड़ा कायम रखना है, हमेशा लई कायम रखना है, इस नियम विच कोई तब्दीली ना होवे, परिवर्तन ना होवे, ये नियम अज है ते कल टूट ना जाए, ये जो सदीवी लागू है इससे ही स्पष्ट है कि संभाल कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। कोई साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज कहंदे ने हे बंदे निश्चिंत रह, तू चिंता परमात्मा नु है। महाराज आप भी कहने ना कर चिंत, चिंता है करते, तू ते चिंतन कर, चिंता ते परमात्मा करदा ते। सो कर ता चिंता करे जिन उपाया जग। महाराज कहंदे ने जिसने ये जगत बनाया है वो तो चिंता कर रहा है, वो तो संभाल कर रहा है, वो तो देख रेख जो है कर रहा है। इस वास्ते तू भूल के भी चिंता ना कर, चिंता नु तू एक पासे रख, क्यों कि जर्रे जर्रे दी वो संभाल कर रहा है। एक जर्रा भी उसकी निगाह विच है, एक पहाड़ भी उसकी निगाह विच है, एक पशु पक्षी भी उसकी निगाह विच है, एक एक मनुख उसकी निगाह विच है। चित्ते अंदर सबको वेक नदरी हेठ चलाएगा, सब कुछ उसकी निगाह दे हेठ है। तो महाराज कहने नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार। जिस करते पुरुख ने ये सारी सृजना बनाई है, आप ही उसकी जर्रे जर्रे भी संभाल कर रहे है, सुचेत होकर संभाल कर रहे है। जब वो संभाल कर रहे है तो एक अद्धे गले दे जंजीर क्यों ने, जब वो संभाल कर रहे है तो एक अद मौज मेले दे घोड़िया ते असवार किस तरह ने, मस्तियां जो है किस तरह पै करदे ने। तो साहिब इस ते जो इशारतन सानू जो है समझा रहे ने, जिसते गले दे जंजीरियां ने उसते करोपी नहीं, कि जो मोज मैलिया दे घोड़े ते असवार है उसते कोई विशेष कृपा नहीं है। जैसे उगया होया सूरज है ते मैं अखां बंद कर लवां, सूरज की मेरे ते करोपी नहीं, मैं अखां बंद कर लवां, ते जे मैं अखां खोल लईआं ने ते मैनूं सारे दा सारा चानना दिखाई देण लग पिया है, मेरे उपर सारे दा सारा चानना बरस पिया है, तो इस सूरज की कोई विशेष कृपा नहीं, वो तो सारी थां ते रोशनी दे रहा है। सतगुरु सदा दयाल है भाई, विण भागा क्या पाई, वो तो सदा दया कर रहा है, हर वक्त दया कर रहा है, कि हर थां ते दया कर रहा है। पर किसी किसी थां ऐसा होंदा है कि हिरदे का भांडा ही मूंदा पे आंदा है, बरखा ते हो रही है पर भांडा उल्टा पे है, तो बूंदा ते पै रही भांडे च पर बूंद टिक नहीं रही, कृपा सदैवी हो रही है हर मनुख दे उते, बरखा सदैवी हो रही है हर मनुख दे उते, हर जीव दे उते। बस जिन्हां दे भांडे पुठे पए ने वो बरखा वो रहमत वो आनंद उन्हां दे टिकदा नहीं, बह जांदा है। सतसंग महज इसलिए है कि असी अपना पुठा भांडा सीधा कर लईए, अपनी पात्रता बना लईए, ताकि वो अगम्मी बरखा
जो रहमत दी हो रही है उनू संजो के रख सकी है, उसनू समेट के रख सकी है। बस सत्संग दा कितना लाभ है, और जो सत्संगी नहीं समझ लेना चाहिदा है भांडे ते उल्टे पैने, ये रहमत नू समेट के नहीं रख सकेगा। इस वास्ते अज असी देखते हैं व्यापक दुख क्यों है, क्योंकि भांडे उल्टे पैने। ये भांडे उल्टे क्यों ने, सत्संग नहीं, रोज की साधना नहीं है, रोज का सत्संग नहीं है। जैसे जैसे कोई रोज सत्संग करता है, उस सत दी विचार नू सुनदा है, कीर्तन दे राही कथा दे राही, कि जद वो देखता है मैनू रस नहीं आया, कि विचार तो यह पता चलता है तेरा हिरदा उल्टा है, भांडा उल्टा पे है, भाव तेरे च भरोसा नहीं, तेरे च श्रद्धा नहीं, तेरे च यकीन नहीं। तो सत्संग सुनदिया सुनदिया यकीन बन जाता है, सत्संग सुनदिया सुनदिया श्रद्धा पैदा हो जाती है। जैसे श्रद्धा पैदा हो गई, जैसे यकीन पैदा हो गया, भांडा सीधा हो गया, तो जैसे भांडा सीधा हो गया अमृत नाल भर गया। तो जो अमृत नाल भर गया वो ते मौज मेलिया के घोड़े के असवार ने, तो जिहड़ा भांडा मूंदा पिया एक ना गली जंजीरियां, बस उन्हां दे गल विच जंजीर है। संभाल सबरी करदा पिया है, पुठे भांडे ते भी बरसदा पिया है, सीधे ते भी वह बरसदा पिया है। ईश्वर ते दोष नहीं आंदा, उस ते इल्जाम नहीं आंदा, हर वक्त बरस रहा है, हर थां ते बरस रहा है। ए बंदे तू बस सिर्फ अपना भांडा ही जो है सीधा कर, हुणे तू अमृत नाल भर जाएगा, सुखां नाल भर जाएगा, फिर मौज मस्तियां दे घोड़ियां ते असवार होके आनंद लवेगा और आनंद वंडेगा। ला पहला आपे भांडे साजियन आपे पूरन दे, एक ने दुध समाइए एक चुल्ले रैन चढ़े, एक ने हाली पैसवन एक ऊपर रैन खड़े, बिना सवारे नानका जिनको नदर करे, मल्ला दूजा आपे साजे करे आप जाय भी रखे आप, किस विच जंतु पाए के देखे थाप थाप, किसनु कहिए नानका सब कुछ आपे आप, पौड़ी वडे किया वडे आईया किस कहना कह न जाए, सो करता का दर

परम सरकार सत्संग प्राप्त है सदग्रहण मेयर करते कुल्ला दर्शन दार सत्संग दरबार विच दर्शन देते हैं निराल साई भक्ति असंत है आप माई ताई दूर मेरे चल के सदगुरों के दर्शन संगत के दर्शन सारियों कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया रामल के अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने कथा कहानियों से बाल दियाई सरवण कर रहे हैं। बहुत वड्डा धन है, बहुत वड्डा दान है, बहुत वड्डा जग है दानी सरवण करने सतगुरों का हुक्म कोट पुण्य सुनहर की बाणी करोड़ों पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है जो वाहगुरु का नाम सरवण किया जाए करोड़ों पुण्यों की प्राप्ति थोड़े जी पुन हो जाने भी बतेरे नहीं करोड़ पुन कौन करेगा जो पर परमेश्वर वाहगुरु का नाम प्राप्त होने से करोड़ पुन प्राप्त है। दूजे पास सर संगत है दूसरा बचन भी है जो वाहगुरु का नाम प्राप्त न हो गए तो सतगुरु कहेंगे कोट दिगुण किस लाद पे जिसमें विसरा जो नाम की प्राप्ति है तो कोट पुण्य मिल रहे हैं जो नाम भुल गया तो करोड़ों पाप मिल रहे हैं कोट दिगुण कठे करोड़ों पाप लगेंगे जिसने वाहगुरु का नाम दिख लिया है। तो सतगुरु ने तो इतने तक लिखे कि नाम संग मन प्रीत न लावे कोट कर्म करते नरक जाए तो वासुदेव गल भी है अपने गुरमुख द्वारे किन्ने के कर्म कर लेंगे संसार में भी पंजा सौ तो चंगे कर्म कर लूगा तो मेरा तो कहते जो करोड़ कर्म भी तू कर लेंगे वाहगुरु के नाम नाल ही जुड़ा फिर भी नरका नहीं जाने नाम संग मन प्रीत न लावे कोट कर्म करते नरक जाए अर्थ नाम जिन मन अरादा चोर की न्याई जंतर है उस नाम की प्राप्ति यात्रा करने वास्ते सतगुरु के चरणों में हाजिर हुए इन्नी अमोलक चीज इन्ना अमोल पदार्थ गुरु जी किन्ने दयालु हैं बिना कीमत बिना किसी अमोल तो बख्श रहे हैं बिना तजर्बे तो बख्श रहे हैं निर्मीत साध चोर किसी नस्ल किसी कौम एडी वी बात अमोलक जिस दे बिना तो गुरु ग्रंथ साहब जी ने बचन कर दिता दुनिया की गलों संसार करते हैं जो वाहगुरु का नाम नहीं है

0: तो फेंक ली माता निजा निजा से कहानी है। करता अजकल वाली रिकॉर्डा ही करता नहीं है, ऐसी याद होंगी थी बड़ा कुछ करना पड़ता। देखे पीर गए पानी पानी में परत पानी पानी पर फेर पानी फेरे फिर पानी है। खासा डर लगता हूं कि जब याद करके गुरु जी ने सुनाईदा कि उन्होंने डांग गुड़क नहीं है जो इधर उधर कन्या ला गया नहीं है। देखे पीर गए पानी पानी में परत पानी पानी पर फेर पानी फेरे फिर पानी है। देखो तब था जाना जन ओ वली पीर ओदा नासी हसन अली हसन अबदाल पंजा साहब के शहर का नाम है। अबदाल की भेदा चारण वाला गुजर सेवक जिन्हें तुसी वली पीर कहने में ओदा असल नाम सी हसन अली। रहन वाला सी कंधार का ओदा चेला सी गुजर भेदा बकरियां चारण वाला अबदाल ओदा नाम सी हसन जमा अबदाल। तो जिसे गुरु का नाम अमर रहूगा उसे चेला भी रहूगा जिसे साधन है क्योंकि हर का सेवकार हर ही गे है। जिसे अब जिस पीर का नाम भी चेले का भी नाम नाल है शहर के हसन अबदाल है शहर का नाम जिन्होंने आप पंजा साहब कहने पंजा साहब गुरुद्वारे का नाम है शहर का नाम हसन अबदाल है। तो ऐसी बली बली कहने आप तगड़े नो कंधार का रहने वाला सी नौ हो गया बली कंधारी कंधारी तो कहा गया दोस्त कंधार सी रहने वाला कंधार दोस्त कोई छोटी भाक नहीं सी पीली दी उतो कंधते सी मुसलमान उतो राजे महाराजे जाके सजदा करते पर तन गुरु नानक चले गए। विद्वान कहना बली पीर पीर पीर निस पीर कर थोड़ी हरी सी इलाके पीरे पीर करते बलिए पर गुरु नानक चले आ गया पीरी खत्म हो गई कदम कितने चली गई पीरी की पीरी खत्म हुई खेच लीनो पानी जानी जग सो कहानी है। उसने ऊ ही लिखती अज जग बोल रहा जी पानी खिचया जी बाबे नानक ने तो गल हुई हुई तो यह नहीं लिखी हो चुकी वो तो हो रही है तो गुरु ने कहा से हो नहीं चुकया हो रहा दिख रहा पानी खिंचया हो। मैं तो पंजा साहब रहा पाकिस्तान रहने का समय मिले कभी उत्तर चले गए जो कभी पैसा रोल रहा थी उतो जो कवर बनी गए एक पीर रहा उतार भी चौबी घंटे मुसलमान उसे यात्रा कर जाते हैं अभी भी चले गए गर्मी का महीना से त्या लगी बड़ी औखी चढ़ाई है बड़ा ऊंचा पहाड़ है असि उन्होंने कहा पीर जी त्या लगी है पानी का पिला दो मत्थे तो पालियां तूड़िया ने फसलों का पानी तो थोड़ा गुरु खिंच ले गया मेरे पर कितने पानी नहीं है जिसे पानी का कहना थोड़ा गुरु भी खिंच लिया सारे इतने कितने पानी कहना मैं घटा लिया चौबी घंटे की मुकाबला पी पी के ऐसे पानी कितने जानी जग से कहानी है। जब देखे ना पीर ने भी तौबा हो गया खाली सरोवर देखो हम करता देखे पीर गए पानी जब वली गंधारी ने देखा भी पानी पा गया कुछ हो चीज पानी ना पर पानी तो हम पानी मुड़ना भी नहीं है करता देखे पीर गए पानी पानी ना पर पानी मेरे भी तू सबकी नहीं बोल रहे तो फिर पानी पर फेर पानी की गल हुई तुम कहने पंजाबी में हाथ मारने हाथ पर हाथ फेरना पानी पहनना हाथ का हाथ मारता ही रह गया तो फिर सिर पानी है तो गंजे हाथ पर भी सिर फिर सिर पर भी हाथ फेरे फिर ये कैसे नहीं बन जाए क्यों नहीं बन जाती कमी में कमानी नहीं देखो कैसी गल भाई साहब देख रहे हैं कविता नहीं बन जाए क्यों नहीं बन जाती कमी में कमानी नहीं देखो कैसी गल भाई साहब देख रहे हैं कविता हाथ में तो पूरी कमानी है।
1: समझ में प्यार में पानी में कमानी न है हाथ में तो पीर तासनी है तो सब संगति अंदर शक्ति नहीं है पास में दुरानी न है और कोई दूजा दुश्मनी है ना ही दूध हो तो पानी है अल्लाह शर्मिंदा हो गया जब पानी ला लिया बाबा नानक ने तो मुड़के पानी खिंचन की शक्ति ना रही कहना जो हाथ में तीर कमान हों मैं मार के ही मर जाऊंगा तो भी हाथ में नहीं है तो दुश्मन कोल हों मैंने पत्थर मार के ही मार दूंगा इन्ना लज्जा आई इन्नी शर्मिंदगी आई तो कहना हम औखा काम हो गया टोबा भी ना रहा नहीं डुबके मर जाऊंगा नहीं दूध दे तो पानी है कहना जो टोबा जो पानी होगा जबड़ी में डुबा जाता इन्ना लज्जा मान हो गया मैं तो कैसी करांगा तो नहीं इतिहास कहते ने तो मैं इतिहास की फिर गांव ने की किया ना जब मरने की जगह में लगी फिर भाई साहब प्यार से कह लिख देने अत ही विशाल गम शुद्ध गिर गिटी लेते धीमे से गढ़ाए जहां रब का शिकंजा है बड़ा गुस्से भी कहा तो पहाड़ी में हथ कह लिया तो पत्थर ने रोड़ दिता किधर नहीं भाई साहब ने तीन शब्द लिखे ने राग सास कंजा लेकिन अर्थ लगूगा जब तो गुरु पीर के चरणों में अर्थ लगू किसे भी रोड़ दिता जिथे सूरज वत गुरु नानक बैठे ने राग जिथे चंद्रमा वत सीतल बहला बैठे जिथे कंजा कामल फुल कामल फुल वर्गा कोमल मरदाना बैठे थोड़ी जी भुख लगे तो कहने में चलिया घर नहीं आखो साथ में बड़ा कोमल मरदा है ना ऊंचा कबड़ी लगा था चले मेरे कैसा अलंकार बिगड़ा जहां रंग सूर्य वत प्रकाश गुरु नानक बैठे ने सास चंद्रमा वत सीतल भाई वाला बैठे तो गुरमुख प्यारे कमल वर्गा कोमल हिरदा जी का है तो भाई मरदाना बैठा उन्हें उनके रोड़ दता जिन्हें से जुड़ाए जहां रब सच कंजा है तो जहां फिर जब मरदानी ने वेख्या भी आंदा पहाड़ का हूं खड़का होया वड्डा ठाकर रोड़िया ने छोटिया ठाकरिया भी ला लिया जिथे वाह वड्डा पहाड़ जगह उतो रूढ़ गया मेरे हस्ता ना भाई चारा भी ना ला लिया ग्रह तोड़ता ही आए जब वेख्या के आर है जो हरी पहाड़ी पहाड़ी मरदाने ने आप चंद कंध चंद जग भंब देखे जो दोनों बैठे से ना भाई बाला तो चंद्रमा वत भाई बाला कमल वत भाई मरदाना दोनों ने देखा मुताबर इतनी होगी सतना पीर में पुराड़ा बापू ने कह लिया दादे नानक ने उसका जवा नहीं बनता सामने उन्होंने लगे दुहाई जगह पहाड़ तो आने लगे सतगुरु ने भी दुहाई में देख दीना से लगाए कर कंजा पात गंजा है ओ गुरु महाराज का पावन पवित्र हाथ जेड़ा पाता का गंज पहाड़ा में नाश करने में गंज कहना पाता ठेर में समूह पातों के पहाड़ा में तोड़ने में समर्थ गुरु का हाथ तो लाता महाराज ने मैं गुरमुखों हम दो तो काम पिछलियों भी सुन लो कई बार तुरके में पछाए है एक बार नहीं उस पत्थर ने मुगलों ने पठाना ने मुसलमाना ने थोड़े छेड़ियां लेके तोड़ के तछिया भी पंजे हुआ निशान मुका दिए एक बार नहीं इतिहास पर तोड़िया पीड़े विच पंजे का निशान कर दिए तो साडे पीर की तुहीन है साडे इस्लाम की तुहीन है साढ़े खुदा की तुहीन है उन्होंने मिटा दिए निशानी ने बहुत बार कोशिश की पंजे खत्म करने की भाई साहब कहते निकले नवीन बीच पंजे में से पंजा है जी जी उन्होंने पछाया तोड़िया तो नवे तो नवा पंजा बिचों निकलिया एक सुनी गल नहीं लिखी गल नहीं
0: ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈ।
1: ਨਿਕਲਿਆ ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀਹ ਚ ਪੰਜੇ ਮਾਸੇ ਪੰਜਾ ਹੈ।
0: ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪੰਜੇ ਚੋਂ ਪੰਜਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਕਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਤ ਮਦ ਬਾਤ ਜੈਸੇ ਕੇਲੇ ਮਦ ਪਾਤ ਜੈਸੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਕੇ ਪਾਤ।
1: ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੇਠ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ।
0: ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੇਟੇ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮੋਚਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲੇ ਆਇਆ ਕਰਦੀਆਂ।
1: ਪੰਜੇ ਚੋਂ ਪੰਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਬਾਤ ਮਦ ਬਾਤ ਜੈਸੇ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੋਂ ਬਾਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ।
0: ਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਛਿੱਲਣ ਲੱਗਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੱਥਰ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾ ਜੋ ਉੱਤਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਿਕਲੇ।
1: ਬਾਤ ਮਦ ਬਾਤ ਜੈਸੇ ਕੇਲੇ ਮਦ ਪਾਤ ਜੈਸੇ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਤੋਂ ਪਾਤ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾ ਹੈ।
0: ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀਆਂ।
1: ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀ
0: ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਪੱਛਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਪੰਜੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ

0: बेनती की थी सदगुरु चरण पर, मन ली बेनती समा दे देता है। जब गुरुदेव गए बहुत भारी जग हो रहा थी, हमन हो रहा थी, दान हो रहा थी। सदगुरु ने कहना महाराज छको प्रसादा। सदगुरु कहने राजन ये दस तू नाम भी जपदा हमें। कहने महाराज नाम कद नहीं जपे। सदगुरु कहने क्यों नहीं जपया? गुरु साहब कहना मैंने नाम जपन की की लोड़ है, हजार लखा तो मैं दान कर दें, हर महीने जग कर दें, पुण कर दें, हवन कर दें, मैंने नाम जपन की की लोड़ है। सदगुरु कहते नहीं, तेरे दान पुण जग किसे कम नहीं होने, हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। महाराज सुगमी विच की वचन करते हैं, गोबिंद भजन बिन बिरखे सब काम, समझ है जी कृपन के निरार दान। कहते नहीं महाराज वादा पुराणा विच दान में बहुत चंगा लिखे। सदगुर कहते जा फिर कागज पेन मिला, कागज पेंसिल मिला ली। सदगुर कहते सिद्ध सहन बैठ पैठों की चीज लिखाई, सूर्य प्रकाश में भाई साहब लिखते ने बैठ गया कर्म कागज पढ़ कर राजा। तानू गुरु नानक कहते सिद्ध सहन है तो सिफर लिख, सिफर लिख दी। सदगुरु कहते एक होर लेख दो लिख दिखा, एक होर लेख तीन सिफरा लिखा लिया सदगुरु ने। तो गुरु नानक देव जी कहते सिद्ध सहन पढ़ के सुना की गए हैं, देखो समझाने का तरीका, पढ़ के सुना की बने। कहना महाराज बनिया तो कख भी नहीं, तीन सिफरा जरूर है, की बात है सिफरा का? मैं तीन सिफर है, कहने की बनाया कहना मेरा कख भी नहीं, सिफरा है जरूर, पैसे लिखिया कहीं नहीं मैं लिखी है। सदगुरु कहने फिर दूजा पैसा खा लो। महाराज कहने हम एका लेख, एका लेख कहने तीसरी लिखा, कहने महाराज एक है। कहने हम उधर लिखते जी कख भी नहीं सी, कुछ भी नहीं सी, नाल लिख दो। जब सिफर नाल लिखाई महाराज पूछते हैं हूं की बने, कहने दस। महाराज कहते झूठियां बोल, सिफर की तकलीफ तो कुछ नहीं होंगी, तू दस कि बनाते हूं, तू तो कहें तो दस जो नहीं हूं, तू दस कह दे सिफर उधर आई है। कहना महाराज हम एक ना ला गई, दो लिखना, कहने जी सौ हो गया, कहना दो लगी है। सदगुरु गुरु नानक देव पंदसा कहते सिद्ध सैना जिन्हें जग पुन दान कर्म कर दे सची दरगाह विच तेरिया सिफरा लिख हो रही है। वाहगुरु के नाम का एक अंक ला ला, हजार गुणा हो जाएगा, जिथे हजार गुणा हो जाएगा। पुराण पुकार नाम बिना सब कूड़ गल ही सोची है। इस गल समाप्ति से सुनो, गुरु के लंगर नाल अखंड पाठ, सुखमनी का पाठ, आनंद साहब का पाठ, जगदीश साहब का पाठ, कीर्तन क्यों रखा गया? तो मंदिर जिसे चलूंगा उसे कला तो जमी उसे भजन भी है, नाम कला भोजन का क्षेत्र बहुत जगह लग जाएंगे, होशना तो नहीं मिलूंगा। तो जिसे भोजन ना भजन हो गए वो तो साढ़े सतगुरों का एक स्थान होगा, तो होर नहीं मिलेगा। तो फिर सिद्ध सैन सिख बनिया, सिखी प्राप्त की, नाम की बात मंगी, मन लो जिसे आरंभ किया आप ने, मैंने भी सुनना ही
1: केड़बो दी रंगीली टल्टी दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे।
2: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नु पता ही है, जे नहीं तो वह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3075।
3: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
4: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

जी ने इना नू योग समझ के गुरता दी गद्दी बख्शी, क्योंकि गुरु नानक का मिशन है जो इदे लायक है उसी नू ए दात प्राप्त हुई।

0: केलबोधी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ए प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नु पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha to Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

कोई तेरे देह आया अकाल पुरख दी जहरा मूरत, अकाल पुरख दी जहरा मूरत, अकाल पुरख दी जहरा मूरत।

जिन्हां कौम धर्म खातर जिंदड़ी वारी एक धारना पढ़ के गुरमुख प्यारे सारे आपां उन्हां शहीदां नूं सजदा करिए फिर आगा विचार विच जुड़ांगे कोई रसना वांझी ना रहे सिधियां धारना सारे प्यार दा सबूत दिओ उन्हां शहीदां नूं सजदा जिन्हां कौम धर्म खातर गुरु ग्रंथ पंथ आन शान खातर गुरमुख प्यारे शहादतां दे जाम कीते पढ़ियो प्यार विच सारे जिन्हां

0: नाग बड़ी धर्म तोवारी प्रणाम है ईशानू।
1: जिन्ना देश कौम धर्म खातर जिंदड़ी वारी गुरमुख प्यारे उन्हां नूं सजदा प्रणाम। पुरातन अते वर्तमान समय दे समूह शहीदां सिंघां नूं चाहे ओह गुरमुख प्यारे 1978 दी विसाखी 13 सिंघां दी शहादत नरक धारीए दे खिलाफ, चाहे ओह 1984 दे शहीदां दी बात जां बाद विच 20वीं सदी दे महान सिख संत बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वाले, जनरल सवेग सिंह, भाई अमरीक सिंह, बाबा अठारा सिंह वर्गे, भाई गुरजंट सिंह, बुल सिंह वाला, बाबा गुरबचन सिंह, मानू चाल वर्गे सिंह शहीद जिन्हां देश कौम धर्म खातर, भाई हरजिंदर सिंह जिंदा, भाई सुखदेव सिंह सुखा, भाई सतवंत सिंह, बेअंत सिंह, केर सिंह वर्गे मौजूदा समय के शहीदां की गल, जेड़े गुरु ग्रंथ पंथ की आन शान खातर जिन्हां ने शहादतां दे जाम पीते, गुरमुख प्यारे शहादत की गल कर लैणी ए बड़ी सौखी है, पर शहादतां दे जाम पीने ए बड़ी औखी बात आ। गुरमुख प्यारे देश कौम धर्म खातर आपां कुरबान करना, विद्वान लिखदा दीवा तेल पा के सारे बाल देने पर सिखी दीप जलाउणा बड़ा औखा, हां घ्यों दी पा के खून चरबी सिखी दीप जलाउणा बड़ा औखा, मनी सिंह दे वांगरा खालसा जी बंद बंद कटाउणा बड़ा औखा। गल्लां करनियां संगत जी सुखालियां ने, पर सिखी सिदक नभाउणा बड़ा औखा। शहीदां दी गल, शहादतां दी गल आ, उहनां दी याद विच चंद घड़ियां सिमरन दे विच वी लाईए सारियां संगतां प्यार विच, गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दे चरणां दा धर के ध्यान प्यार दा सबूत दिओ, सारे माई भाई रज के सिमरन विच शामिल होवो। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु।

नाम ठाम न जात जाकर रूप रेख न रूप रंग न रेख आद पुरखुदार मूर्त यो नाद सेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हुई फैले अनुराग। नाम काम विहीन पेखत दामो न जाहे सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मान तताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल खेल खेल अनंत को ब्रेक। देव पेव न जानी जे बेदर्क देव रूप रंग न जात पात सु जानी के जेव तात्मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन चक्र बकर फिर जद जाक मानी पर दीन। लोक चौदह के विखय जग जापी जय जाप आद देव नाद मूर्त थप सब जय साप परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख बार सर्व सुरचो स्वयं भगवण भजनहार। कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्मधाम सु परम रहत भूतल अख पेश अंग रंग रंग जाग जात पादना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम। आप रूप अमीगान औसत एक पुरख बतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप सूत अंगहीन भंग अनात्म एक पुरख पार सर्व लायक सर्व गायक सर्व को प्रत पार सर्वगंता सर्वहंता सर्वदयन पेख सर्वशास्त्र न जानी जे रूप रंग अर वेख परम वीर प्राण जा कह नेद बागत नेत गोट सिमरत प्राण शास्त्र नया वही बहुत चित मद पार छंद दव प्रसाद गुणगन उदार महिमा पार आसन भंग पवन अंग अनुभव प्रकाश निधन नाश राजन बाह शान शाह राजन राज पानन पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालन बाल रंकान रंग कालन काल अनभूत अंग आप अंग आत्मित पार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम। आत दुत प्रचंड मृतगत अखंड अलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्व प्रणाढ़ आन दंड बाढ़ चाचरी छंद दव प्रसाद गोबिंदे मकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे अकामे भुजंग प्रयाद छंद जदर जकर करदा जदर जकर हरदा जदर जकर दाने जदर जकर जाने जदर जकर वरती जदर जकर भरती चतर चकर पाले चतर चकर काले चतर चकर पासे चतर चकर वासे चतर चकर माने आए चतर चकर दाने आए चाचरी छंद। ना सत्र न मित्र न परमंग न पितर न करमंग न काही जनमंग जाये न चित्र न मित्र पर पवित्र प्रतिशा दिशा दृश कृष्य भगवती छंद प्रसाद कथते के आशज देस है के अभिज बिस है के अगंज कर्म है के अपज परम है के अभिज लोक है के अदत सुख है के अब दूत वर्ण है के वे पूत करण है के राजंग प्रवाह है के धर्मंग तुझा है के अशोक वर्ण है के सर्वा वर्ण है के जागतंग कृतिया के शतरंग क्षत्रिय है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुपन उप है के आदो देव है के आप अभेव है के चतरंग भीन है के कह दीना है के रोज जाकर ही मेरा कहे के पाक बेअब हैं के गैबुल गैब हैं के अफबुल गुनाह हैं के शान शाह हैं के कारण कुनंद हैं के रोजी दहंद हैं के राज करीम हैं के कर्मंग करीम हैं के सर्वंग कली हैं के सर्वंग दली हैं के सर्वत्र माने हैं के सर्वत्र दाने हैं के सर्वत्र गौन हैं के सर्वत्र पावन हैं के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र भाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र माने आए सदैव प्रधान है के सर्वत्र जापे आए के सर्वत्र थापे आए के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीमा के परमंग फीमा है के अगलो लामा है के साहब कलाम है के उसनो बजू है तमाम रजू है हमेशा सलाम है सलीखत मदाम है गनीमल सरसदा गरीबल परस्ता है बुलंदल मकान है जमीनल जमाना है तमीजल तमाम है रजूवल नदान है हरीफल अजीमा रिया गिरी गिना है नेकल तरंग है बेद है पांग है
Ajijan Vaja, Gnivan Karaja, and Rota Rupa, the Mokta Buddha, Purpoka Brahans, the Jokes of the Hines, the Abund Rupa, Pedia Nubai. Sumasta Braja, Sadasar Bhaja, Sumasta Lamas, the Abula Kama, and Rabas Rupa, Gada Nubai, Wangad Rupa, Nas Rupa, and Angiana Mitra Pangitra Kame. Tribargam, Tribade, Gandhya, Gade, Subang, Sarupa, Gesu, Sarba, Naragi, Tribang, Sarupa, Saja, Sudai, Ganakam, Pranas, and Prithil, Pravas, and the Rokota Pravahe, Sudabung, Sadai, Bipokota, Sarupa, Perjota, Nupai, Nirokota, Sadahe, Bipokota, Pravahe, Anakota, Sarupa, Perjota, Nupai, Jajri, Shambh, Apangahan, Angaha, Bega, Lega, Burma, Karma, Nada, Jugada, Jahabam, Buddha, Tuta, Nasa, Daza, Tanda, Banda, Bagdan, Bragda, Nasa, Brigada, and Najanta, Sananta, Leka, Dekai. Aleka, Bega, Tai, Gai, Samha, Gamha, Nila, Nada, and Natas, Neta, Jada, Jada, Hain, Charpurshand, Dau Prasad. Sarbang Hanta, Sarbang Ganta, Sarbang Kata, Sarbang Gata, Sarbang Harta, Sarbang Karta, Sarbang Pranam, Sarbang Tranam, Sarbang Karman, Sarbang Tarman, Sarbang Jukta, Sarbang Mukta, Sabul Shandu, Tau Prasad. Namonarkanase, Sudabang Pragase, Nangang Srupe, Bangang Babute, Brahmatan, Brahmate, Sadarvasati, God, Srupe, Nrabad Babute, Nangi, and Amitra Pangidra Kame. Nirpangi, Sarupa, Sarvangi, and Upe, Naputrana, Putrana, Satrana, Matrana, Tatana, Matana, Jatana, Patana, Sakan, Sriga, Mithom, Ekans, the Abung Pravaya, Jayajai, Pagvati, Shanta, Prasad. Kejahar Jura, Kihadra, Jura, Amazon, Salama, Samasa, Lokalama, Kasav, the Maga, Kosno, Jiraga, Kikamal, Karima, Karaj, Karaj, Karima, and Karuji, the Henda, and Karaj, Karenda. Kareem Lakamal and Kosan Jamal and Ganimal Karaja and Grival Navaja, Ripul Sikana, Rasul of Kana, Kalankum Pranasa, Smasul Navasa Aganjal Ganima, Jai Karihima, Smasul Javaha, Kasav Kira, and Kanakum Pranasa, and Bastul Navasa, Kasarul Gavana, Misul Ravanae Kamamal Tamija, Smasul Ajija, Parang Paramisa, Smasul Adisa, Rizal Liga, Mizal of Vega, Jamino Jamahe, Mikala Mahe, Krimal Kamal and Jiro Jamale Kyatang Prakasa, Kamatosavasa, Kyatavas Rupa, Kamatova Buddha, Kamatopasa, Kyatam Prabha, Kyatilavananga, Kamatopanga, Mother Power Shandu, Tau Prasad. Munman Pranamu, Gunganamadamu, Arbaria Ganju, Arnar Parapanju, Anagana Pranamu, Munman Salamu, Arnaria Kandu, Arnaria Mandu, Anapavanasu, Munman Prakash Gunagan Pranamu, Jal Salamadamu, Anshijangu, Asana Pangu, Pumapa, Argat Mithudar, Jal Salamandu, this was a Pandu, Jal Salamahantu, this was Beyantu. Anpavana Asu, Tretarthura Asu, Rajan Bahu, Kasada, Umkari Adu, Kasani and Adu, Kalakanda Kalu, Gurubara Kalu, Karkar Pranamu, Jajaranam, Anishijigatu, Ajijanabatu, Anchanjigatu, and Ranjabatu, Antotapandar, Antatabar, Adi to Dharmu, Adi to Karmu, and Varanantu, Data Mahantu. Harbol Mana Shandu, Dau Prasad, Karnalia, Hair Kalia, Kalakantan Ham, Mandana, Jagatishura, Parameshura, Kalakarna, Sarbavarana, Tretakitarana, Jagaki Karana, Manamania, Jagajana, Sarbung Parahan, Sarbung Karahan, Sarbasa, and Sarbanasa, Karana Karahan, Biswam Parahan, Sarbisura, Jagatishura. Brahmandas hai, Kalakandas hai, Parthi Parahan, Karana Karahan, Japa Japa, the Pasa Pai, Grata Grata, Mritamrata, Mritamrata, Karana Grata, Grata Grata, Taranindra Dai, Amarteshwarahan, Parameshwarahan, Agrata Grata, Mritamrata, Japa Grata, Mritamrata, Narnaika, Kalakaika, Biswam Parahan, Karana Lia, Ripanaika, Sarupaika, Pavanjan, Hair, Ganjan, Hair, Ripatapan, Japa Japanai. Akalang Kretahan, Sarva Kretahan, Karta Karahan, Hartahare, Paramatamahan, Sarvatamahan, Atam Basan, Jaskejas, Pujanga Brayad Shandu
नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग दाम संग शांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो ज्योति ज्योति नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादिंब भूते एकलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बांके अपंगी स्वरूपे नंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले नंगी अकामे एक आचरी चांद अजय अलय अपय अभय पूव जुअन आस काश गंज पंज लख पख अकाल दयाल लेख पेख नाम काम गाटा नाते प्रमाते जो नियमोने नराग्य नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग परमंग गंजे लेखे भुजंग प्रयात छंद नमासल प्रणामे समाज तुल प्रणाशे गंजलो नामे समाज तुल निवासे निर्गामंग बभूते समाज तुल स्वरूप गर्मंग प्रणाश सुधर्मंग बभूते सदा सचिदानंद सदरंग प्रणाशी गिरिमल गुनिंदा समाज तुल निवासी अजायब बभूते विजायब गुनी मैं हरियंग करियंग करिमल रही मैं जगत जगर वर्दी जगत जगर भुगते श्रियंभव शुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूप सदांग संगे अभंगंग विभूते चतुर्चक्र वर्ती चतुर्चक्र भुगते स्वयं पव शुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूप सदांग संगे अभंगंग विभूते सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ ताऊ प्रसाद सवैये एको ओंकार सतगुरु प्रसाद ताऊ प्रसाद सवैये पातशाही दसवीं श्रावक शुद्ध समूह सुधान के देख बिरु कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधा देख संत समूह अनेक मति गए सारे देश को देख रहे हो मात गौ न देखे तो प्राण पति गए सरि भगवान की भाई कृपा हो ते एक रति बिन एक रति गए माते मतंग जर जर संग अनूप तंग सुरंग सवारी कोट तरंग कुरंग से कूदत पवन के गुण को जात निवारी पारी बजान के पु बलिविद न्यावत शीस न जात विचारी एते पय तो काम पय भूपत अंत को नंग पाय पदारी जीत फिर सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारी गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हसत है हज राज हजारी पूत भवैख भगवान के भूपत कौन गणे नहीं जात विचारी सरी पद सरी भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सुधारी तीर स्नानु दयादम दानु सुसंजम ने मन एक बसेख वेद पुराण कदेव कुरानु जमीन जवान सुबान कदेख पौन हार जति अतार सब सब चार हजार कदेख सरी भगवान भजबन भूपत एक रति बिन एक रेख शुद्ध सुपाह दुरंत दुवाह सुशासना दुर्जान दलेंगे भारी गवान परि मन में कर पर्वत पंख हरिना हलाएंगे प्योर रीर मरूर मवासन मातम दंगन मान मलाएंगे सरी पात सरी भगवान कृपा बेन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर पार बटे बरियार बचारे सर की तार पछैया तोर तदेश मलिंद मवासन मात के जान के मान मलैया गाड़ी गड़ान को तोड़ नहार सुबात नहीं जगजार लवैया साहिब श्री सब कुशर नायक जाचका नेक सो एक दवैया दानव देव नंदन साचर भूत भवैख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन पर तापन बाढ़ जैत तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिर जग सतर सब लोग जपेंगे मान वेंद्र के जंदर नरात जोंदर लोग राज करेंगे कोट ही नानक जादिक दान अनेक सौ अंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सची पत अंत फसे जम फाज भरेंगे जे नार सरी पद के परसें पग ते नर फेर न दे तरेंगे कहाँ पयो जो दो लोचन मुद के बैठे हो भक्त ध्यान लगायो न हाथ फिर लिए सात समुद्रन लोग गयो पर लोग गवायो बास की मुख अंत बैठ गए ऐसे ही ऐसे से बैठ बतायो साच कहो सुन देहो सब जन प्रेम कियो दिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पोज धरियो सर काहू लै लिंग करे लटकायो काहू लख हर बाची दिशा मैं काहू पछा को शीस नवायो कोहू बदान को पूज दै पास कोहू मृदान को पूजन तायो कूर करया और

को पूजन पायो गुर करया और जो सभी जग श्री भगवान को भेद न पायो। पातशाही दसवीं कव्य वाच में हुंदी चाओ पई हमरी करो हाल दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दोष्ट सब तुम कावहु आप हाथ दै मोहे बचावहु सुखी बसै मोरु परिवार सेवक सिख सब करतार मोर अच्छा निज कर दे करे आए सब बैरन कहो आज संगरे आए पूर्ण होई हमारी आशा दूर भजन की राय प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सेख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ है मुझे भरे आए मरण काल का त्रास ने भरे आए ऊ जो सदा हमारे बचा सरिया सोजु कर रक्षा राख ले रखन हारी साय संत साय प्यारी दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हम बुरी चतुर्दश कंता काल पाई ब्रह्मा बबधरा काल पाई सबजू अवधरा काल पाए कर विष्णु बरगासा सकल काल का किया तमाशा जबन काल जोगी सब कियो मेदराज ब्रह्मा जो थियो जवन काल सब लोग सुवारा नमस्कार है ताय मारा जवन काल सब जगत बनायो देवदान जैसने उपजायो आद अंत एक अवतार सोई गुरु समझे हमारा नमस्कार दसी को हमारी सकल प्रजाजन आप सुवारी शिवगण को शिव गुण सुख दियो सतर्न को बल मोहबद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चिट्ठी ते कुंचरिया स्थूला सब पर कृपा दृढ़ कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान कट कट के पट पट की जाने जब उद करख करा कर धारा प्रजा दर्द तब दे अपारा जब या करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बदन श्रेठ सब धारे आप अपनी भूज उचारे तुम सभी तेरे निरालम जानत भेद भेद हरियालम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद नील अनाद संभ जागा मूढ़ उजारत बेदा जागो पेवना पावत बेदा तां को कर बहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कह सेव निरंकार का जीण न पैव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत पिन पिन तो है तेती तुमरा लखन जाए पसारा कहे बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कहीं भूपा अंडज जे रज सिद्ध जकीनी उत्पज खान बहोर रच दीनी कहूं फूल राजा हव बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सगरी सेठ दिखाई चम पव आज जुगा स्वरूप सुजाम पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार सिख संग रो दुष्ट जिते उठव दुद पाता सकल मलेश करो रण काता जे आज तो तव सरणी परे दिन के दोष्ट तव तव मरे पुरख जवन भग बड़े त्यारे जिनके तम संकट सब टारे जो गल कोई गुवार त्याय है ताके काल निकट नहीं आए रक्षा हुई ताई सब काला दुष्ट रिष्ट डर तत काला कृपा दृष्ट तन जय न हरे हो ताके दाब तनक मोह हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह स्व सके न कोई एक बार जंत मैं संभारा काल फास दे ताई उबारा जैन नर नाम तिहारु कहा दारद दोष्ट दोग तेरा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हा दलिह उबारी सर्वठार महो सहाई दोष्ट दोग ते लिह बचाई खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दलिह उबारी सर्वठार महो सहाई दोष्ट दोग ते लिह बचाई राम कली महला तीजानंद एको अंकार सदगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सदगुरु मैं पाया सदगुर तां पाया सहज से दी मन भजियां बधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गा बणाइयां शब्दो तां गावो हरि केरा मन जिन वसाया कहे नानक आनंद होआ सदगुरु मैं पाया ई मन मेरिया तू सारो हर नाले
हर नाद रहो तू मन मेरे दुख सब विसरण अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारण सब ना गल्ला सुरा स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो रनाले साचे साहिबा क्या नहीं करते रहे करता तेरा सब कुछ है जिस दे सो पावे सदा सिवत सलाह तेरी नाम मन बसावे नाम जिनका मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सचे साहिब क्या नहीं करते रहे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मनाए वसया जन इच्छा सब बजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बेटाओ जिस दियां ए बड़ियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पांच शब्द तद कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पांच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जन को से नाम हर कह लागे कहे नानक तैं सुख हुआ तित कर अनहद वाजे साची लिवै बन देन माणी लिवै बाजों क्या करे बेचारी आ तुद बाल सिमरत कोई नाहीं कृपा कर बनवारी आ इस नो होर साहु नाही शब्द लाग सवारी आ कह नानक लिवै बाजों क्या करे बेचारी आ आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जाणिया जाणे आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारे आ कर कृपा अकलिवे कटे ज्ञान अंजन सारे आ अंदरों जिनका मोह दुटा तिनका शब्द सचे सवारिया कहे नानक आनंद आनंद गुरते जाने बाबा जिस तू दे सोई जन पावे पावे तसो जन दे जिसन होर क्या करें बेचारिया एक भरम भूले फिर दह दिस एक नाम लाग सवारिया गुर प्रसादी मन पया निर्मलो जिन्ना पाणा पावे कहे नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावे आब हो संत प्यारे हो अगथ की करें कहानी अगथ केरी के द्वारे पाई है तन मन तन सब सौ गुरु का हुक्म मनिया पाई है हुक्म मनिया गुरु के रागा वो सची बाणी कहे नानक गुणो संत कथे अगथ कहानी ए मन चंचला चतराई किने ना पाया चतराई ना पाया किने तू सुन मन मेरे आए माया मोहनी जिने बरम भुलाया माया तमोनी तने की जन ठगौली पाई आ कुरबान कीता दिस बिटो जन्मो मीठा लाया कहे नानक मन चांचल जतराई किने न पाया ही मन प्यारिया तू सदा सच संभाले हे कुटंब तू जे देखदा चलै नाही तेरा नाले साथ तेरा चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाई है ऐसा कम मूले न कीचै जे तंत बछताई है सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरा नाले कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले अग मैं गोचरा तेरा अंत न पाया किने तेरा अपनाव तू जान ही जी जंत सब खेल तेरा क्या को आग बखाण ही आख है दिख है सब तू है जिन जग तो पाया कह नानक तू सदा गम है तेरा अंत न पाया सुर नार मुनियन अमृत गोज दे सु अमृत गुर दे पाया पाया अमृत गुर कृपा किन्नी सच्चा मन बसाया जी जंत सब तुद पाई एक वेख बरसने आया लभ लोभ अहंकार जूगा सतगुरु भला पाया कह नानक जिसनों दे दुठा तिन्ह अमृत गुर दे पाया कह नानक जिसनों आप दुठा तिन्ह अमृत गुर दे पाया भगतां की चाल निराली चाला निराली भगतां के री बिखम मार्ग चलना लभ लोभ अहंकार ताज तृष्णा बहुत ना ही बोलना खन्यो दिखी वालो निकीए तमार्ग जाना गुर प्रसादी जिनी आप तजया हर वास ना समाणी कहे नानक जाल भगदान जुग हो जुग निराली ज्यों तू जलाही तिव जला स्वामी और क्या जाना गुण तेरे जब तू जलाही तिव जला जना मार्ग पावे कर कृपा जिन नाम लाही से हर हर सदा त्यावे जिसनों कथा

अपे माता अपे पिता जन जी हो पाई जगत दिखाया। गुर प्रसादी पुजया त जल दोआ जल तनरी आया। कहे नानक श्रेष्ठ का मूल रचया जोत राखी दा तू जग मह आया। मन जाओ भया प्रभागम सुनया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनया। हर गाओ मंगल निर सखिए सोख दुख न ब्यापे। गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना पिर जापे। अन हत बाणी गुर सब जानी हर नाम हर रस भोगो। कहे नानक प्रभाव मिलया करण कारण जोगो। ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कहे क्या तुद कर्म कमाया। के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन ना बसाया। गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखया पाया। कहे नानक कहे शरीर परवान हुआ आजन सतगुर से उच तलाया। इन नेत्रो मेरे हो हर तुम मैं जो तरी। हर बिन वरना देखो कोई हार बिन वरना देखो कोई। नदरी हर निहालया हे बे संसार तुम देख दे। हर का रूप है हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझया जा बेखा हर एक है हर बिन वरना कोई। कहे नानक नेत्रां दसे सतगुर मिलया ऐंदे बिदृढ़ होई। ए श्रवणो मेरे हो साचा सुनने नो पठाए। साचा सुनने नो पठाए श्रीर लाए। सुनो सतबाणी जत सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस माणी। साचा लख बडाणी ताकी गत कही न जाए। ए कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो वहो। साचा सुनने नो पठाए हार जियो गुफा अंदर रख कै बाजा पवन बजाया। बजाया बाजा पवन नौ द्वारे प्रगट किए। दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए पापनी। एक ना दसवां द्वार दिखाया।

0: कोट गर्भन कठोर कई कोट अभिघातन निगोर कई कोट माया शर्माए कई कोट परदेश शर्माए
1: नानक
0: कई कोट सिद्ध जत्ती

0: संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक भीतर है।
1: संत के दुखन से मुख पवे संतन के दुखन साथ जो लवे
0: संतन के दुखन सर्व जोन पाए संत के दुखन तिरत जोन कर मारे
1: संत के दुखन कृष्णा में जले संत के दुखन सब को चले
0: संत के दुखन तेज सब जाए संत के दुखन नीच निकाले
1: संत का
0: निंदक महा असाई संत का निंदक घंट करना पाए
1: संत का निंदक महा
0: संत का निंदक

0: हमारे
1: अपने
0: दास को देव अटाई अपने सेवक को नाम जपाई
1: अपने सेवक की आपस रखे ताकि घटित हो

का ब्याह रसना बात की उपम रसना जपे नाम नाम तिल तिल कर कटी में हर हाँ जब बिस्तरे गोविंद आए दिनों में जीवन कटता है। सैकल पास ने बड़े सवाल पाए पानी बड़े जवाब देते सिर्फ विश्वास की का महाराज ये जीवन जीना हो जिस करना हो रस्ती भी बनना हो तो जीवन भी जीना हो सरकार प्रवान भी हो रही तो फिर जीवन की जाग दस दो सहज उत्पाचक ने आज खत्म में जा प्रसंग महाराज दसो आख्या सो जी लिया जिस मन बसिया सोए नानक अवर ना जीवे कोए तो भोलिया दुनिया तेरे के तेरी जीतिया कोई पत लाने ना देगा नहीं ना लो दे जे बना भी जाएगा तेरी पत लाओगे जमा दे दू फिर की करें जे जीवे पत लगती जाए सब हराम जैसा किसका ताई मेरे साहब जो पंचम प्राप्त ने बड़े प्यारे दिन कह पढ़िया जे शरीर तृप्त होंगे ना भोजन खा इस तरह हिरदा भी तृप्त होंगे नाम जाप जे गुरु का सिख है ना तो जिन्हें तृप्ति करता है शरीर की आत्मा की तृप्ति वास्ते भी नाम जरूरी है। मेरे साहब जो प्राप्त ने कहा है तृप्त पहली सच भोजन खाया मन तन रचना नाम से आया और जीवना हर जीवना कि जीवन हर जप सत तो आप बड़े भागा वाले हो बड़े भागी हर संग प्रभाव है भाग ही परम चोपड़ा खावे बिन पाता सत्संग ना लभे वो भी मेरे सेकर ने बैठे हुए वो भी मेरे पापा जी बैठे हुए वो भी मेरे पत्थर के भर सुन की ओर कीर्तन सुन की ओर कथा विचार सुन वो मुझे पा क्योंकि मेरे शहर गुरु पातशाह ने बड़े प्यारे बचन पढ़िया गुरबाणी गाओ भाई को उसका पुरस्कार सो गुरबाणी से जग में जन कर्म बस के मन तो आओ उन्हें भाई साहब जी बड़े प्यारे विचार दे रहे सन तीन साहब भाई संतोख सिंह जी भी हथ लिप्त गाथा गुरु इतिहास सरवण करवाया सन शहर गुरु तेग बहादुर पातशाह आप जी ने सरवण किया है शब्द हर जन राम नाम गंगा गुरु तेग बहादुर पातशाह की उन्होंने अनुमत उठाई नहीं उन्होंने गुरु के गुण गाए इस पातशाह जे साढ़े नाल अन्याय कर रहा तो तू मेरा न्याय कर तो मेरे सह गुरु पातशाह प्यारे बचने गुरु पंचम पातशाह आओ सब शरण करो तेरे सेवक को भाव किस नहीं जन नहीं आ रही रंग की कर सकते भाव भी नहीं लग सकता पर जी करनी सह गुरु तेग बहादुर पातशाह ने अपनी मर्जी नाल जो करना सो करना जिसे औरंगजेब पातशाह कुछ नहीं कर सकते आओ पंचम पातशाह प्यारे बचन पढ़िए तेरे सह गुरु पातशाह की कहते तेरे सेवक को भाव किस नहीं।

0: years for Luther. जब लोगों ने वो भाग बचावे सत्रहवें चलाव साल पाल लिखना है राकत है अपनों का तो है कल पाप समूह ना पेटर पावे और की बात कहाँ कहे और तो एक ही पेपर नहीं लिखा है पर यार तेरे माता से गर्ल तो तूने करी है तू साथ से बच्चा ना करे पर पूरा मानता है आई कभी साथ में क्या कभी मेरा मुझ में किस नहीं जो भी है सो तेरा तेरा तू सो सौंपे क्या लागे मेरा अपराध तू तू करता तू हुआ मुझे रहा ना हूँ जब आप पापा का मिट गया ना मैं देख सकता आओ सर की पास्ता से पकड़ कि वाणी खाते हृदय विस्तार कर कि वाणी रूपी अमृत जिन्हें अमृत की
1: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God.
2: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 250-392-3874 ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 250-392-3874 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ singhsabha2@gmail.com singhsabha2@gmail.com ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ

एक ही लाल माज जो आप जी ने आड़े 44 अति 43 पुरातन मंच श्रम की है, कोशिश की है। तो दूजा राग है राग नट नट महिला पंजवा चरण कमल संग लागी जोड़ी सुख सागर कर।

attorneys working with me because suddenly जो समझदार इस तरह मिलाप शुरू हो गया है इराग है जयंत मना दो रात का हुजरत जयवंती अति मना जयंत मना ये बंदिश इफ्ता दे पुत्र बात पढ़ती समा